0: साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को जांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधन

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए। देखिए ये पीएम ने

0: 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: FM Rainbow 101.9

0: नमस्ते, हेलो, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आ गई यहाँ पे, मेरे साथ, वेल, मैं अकेली नहीं हूँ, हमेशा जैसे अकेली होती हूँ, आपका साथ होता है व्हाट्सएप पर और फोन कॉल्स पर 1 बजे, लेकिन आज हम अकेले नहीं है। हाँ जी, मैं हूँ आरजे जयश्री और मेरे साथ है आरजे जेडी। जेडी का मतलब क्या है? जेडी,
1: JD यानी जयदीप। हेलो हैदराबाद।
0: जयदीप, इतना खूबसूरत नाम। वेल, जयदीप और जयश्री के साथ आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब। नमस्ते हेलो आदाब में ना हम रूबरू होते हैं आपसे व्हाट्सएप पर, यानी हमारे इंस्टेंट मैसेजेस पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, 9140-23-23-4822। जल्दी से ना ये नंबर अपने फ़ोन पर टाइप कर लीजिए, सेव कर लीजिए और नाम लिखिए रेनबो FM। हाँ जी, उसके बाद वहाँ जाके खुद का खूबसूरत मैसेज टाइप कीजिए, हाय कीजिए मुझे और जयदीप को, हेलो कीजिए, एंड कोई कुछ कहना है अरे वो भी बता दीजिए। जैसे यहाँ पर सरवरली साहब ने बताया, गुड मॉर्निंग जयश्री मैडम। वेल, गुड मॉर्निंग सरवरली साहब, आपने खूबसूरत वीडियो भेजा जो मैं हमारे लिसनर्स को नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं समझा सकती हूँ कि वीडियो में क्या है। वेल, एक बहुत ही पुराना रेडियो, एंटिक रेडियो है एन इंडीड, और मैसेज करके डिलीट कर देना। ये भी चल रहा है यहाँ पे, और भी यहाँ पे, और एक वीडियो है गुड मॉर्निंग वाला, नाम नहीं लिखा लेकिन एक खूबसूरत जिफ्स भेज रहे हैं मेरे लिए। हाँ जी, वेल, मुरली गारू मन इंतक मुंदु नारजे आय न कोसम गुड़ चाला मैसेजेस वच्चाई, सो अद गुड़ तेलुगुलो। वेल, नेन तेलुगुलो इंतक मातलाडुतुन्नानु, अरे भाषा भेदम एमी लेदु, इवि मनसुलो मातलु, मतलब दिल के दिल से तार जुड़ना है तो भाषा का क्या ही इसमें रोल है ना। वेल, एनी भाषा इज ओके, दिस इज अ ट्राई लिंगुअल शो। और जेडी,
1: जी मैम।
0: जैसे हम बात करते हैं किसी से, दिल से दिल के तार जुड़ते हैं हमारे श्रोताओं से, और जैसे आप और मैं भी बात करते हैं ना, तो ज़्यादा भाषाओं से मुझे लगता है कि वी कम्युनिकेट मोर विद आर बॉडी लैंग्वेज, वी कम्युनिकेट मोर विद आर इंटेंशंस, विद द वे वी सी, विद द वे वी लुक, एंड विद आर एक्शंस, करेक्ट?
1: जी बहुत बहुत सही है, क्योंकि बिना बॉडी लैंग्वेज के कहाँ मज़ा आता है। मतलब मज़ा ही मतलब एक्सप्रेशंस मैटर बहुत करते हैं, एंड एक्सप्रेशंस भी एक तरह से बॉडी लैंग्वेज का ही तो पार्ट है।
0: एब्सोल्युटली, एंड कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे हम पूरा वर्चुअल हो गए थे, कितनी घुटन सी हो रही थी कि हम लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, एंड इट वॉज अ डिफरेंट एरा, बट आफ्टर दैट नाउ आई फील वी सर्वाइव्ड दैट एंटायर माइलस्टोन, है ना?
1: जी बहुत, दैट वॉज लाइक ए रियलाइजेशन फॉर एवरी वन, यू नो, समझ रहे हो आप?
0: एब्सोल्युटली, एंड वैल्यू पता चल रहा है लाइफ का, राइट?
1: एग्जैक्टली
0: लोगों का, रिश्तों के, एंड दोस्ती का। वेल, दोस्ती के नाम पे खूबसूरत गाने यहाँ पे प्ले कर रही हूँ मैं। ये जयदीप ने कहा जरा जैसी थोड़ा अपबीट वाले गाने प्ले करे, तो एतराज फिल्म से गीला गीला ये वाला गाना उन्होंने बोला, तो मुझे एतराज क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। चलिए, लेट्स लिसन टू गीला गीला फ्रॉम एतराज। हियर वी गो, ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप राइट नेक्स्ट।
2: నేడు తెలంగాణ ఎస్ఎస్సి 2026 ఫలితాలలో శ్రీ చైతన్య స్కూల్ స్టేట్ టాప్ 600 కి 597, నిన్న జేఈఈ మెయిన్ ఓపెన్ కేటగిరీలో 2 ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకులు. ఇక స్కూల్ ఫౌండేషన్ అంటేనే శ్రీ చైతన్య స్కూల్.

Good morning, Jashri. I'm Umar Khan from Falaknama Palace. Please play one song, Malang movie title track. बिल्कुल हम प्ले करेंगे उमर साहब. एंड यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. एक्सपेरिमेंट करने का मजा तो अलग ही है, लेकिन ये था लाइव एक्सपेरिमेंट. सोनू निगम जी ने एक दिन एक फुल मेकअप, ठीक है, फुल मेकअप बन गए थे एक बुजुर्ग आदमी की तरह, ठीक है. उसके बाद उन्होंने हारमोनियम लिया और एक बहुत ही भीड़ भरे रास्ते में वो बैठ गए और उन्होंने गाना शुरू कर दिया. उन्होंने ग्लासेस पहने थे, कोई बिल्कुल गेस भी नहीं कर सकता कि वो सोनू निगम जी हैं.

बहुत सारे लोग आए, थोड़े पैसे भी दे दिए और चले गए. बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बस ठहर के उन्होंने सुना गाना एंड चले गए. एक बंदा ऐसा था कि वीडियो लेने लगा और कहने लगा कि अंकल साहब आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपको तो फेमस होना चाहिए, मैं आपको कुछ शायद इन्फ्लुएंसर होगा, मैं तो यू नो आपको सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, वो ये करके फोटो वोटो लेके वो भी चला गया. लेकिन सोनू निगम जी का ये एक्सपेरिमेंट था टू फाइंड आउट कि हुनर अगर किसी में हो, क्या हुनर की तारीफ होगी ऐसे ही जनरली, क्या होगी हुनर की तारीफ, क्या जगह देखा जाएगा, अगर कोई स्टेज पे गाया उसी को पहचाना जाएगा, अगर कोई ऐवे ही गाता है तो उनको भी वो प्यार मिलता है. ये वाला एक्सपेरिमेंट था एंड बखूबी उन्होंने प्रूव कर दिया कि जहाँ भी हो

0: एंड बखूबी उन्होंने प्रूव कर दिया कि जहाँ भी हो, हुनर हो, टैलेंट हो, एंड दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड. व्हाट डू यू से जेडी?
1: दैट वॉज रियली थॉटफुल, यू नो, इतना मतलब उनको ये आइडिया बहुत मस्त आया होगा ना, क्योंकि उनको भी जानने को मिलता है कि क्या चल रहा है असली दुनिया में.
0: हाँ, और मुझे ताजू की बात ये थी कि किसी ने उनको पहचाना ही नहीं.
1: मतलब दैट वॉज रियली फैंटास्टिक, जिस तरह का से उन्होंने मतलब मेकअप किया होगा.
0: मेकअप ठीक है, लेकिन वो देखो भाई, आंख भी बंद कर लो ना. अगर अन्नू मलिक जी गाते हैं तो मैं पहचान जाती हूँ. ऑफकोर्स हम आरजीज हैं, लेकिन अगर ना कोई भी शंकर महादेवन साहब का, लाइक बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो आंख बंद करते गाना सुनते पहचान लेते हैं कि वो रफ़ी साहब की आवाज़ है, या यू नो महमूद साहब की आवाज़ है, या किसकी भी आवाज़ हो, लेकिन टक करके पहचान जाते हैं.
1: मतलब भी वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. मतलब हम लोग जब रोड पे भी चलते होते हैं, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. अगर कॉन्शियस
0: कौन
1: होंगे,
0: एक्सपेरिमेंट कर रहा है
1: जी
0: करके
1: जी जी
0: नहीं, मुझे लगता है कि अवेयरनेस होना चाहिए. जो आंखों से आप देख रहे हो शायद वो धोखा दे दे, लेकिन आपके
1: एक्चुअली
0: सेंसेस, लाइक अगर आप आंख बंद करके कानों से सुने तो ऑफ कोर्स सोनू निगम जी का वो आवाज़ की वो झलक जो है, जो अभी मैं गाना प्ले करने वाली हूँ उसमें आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज़ दीवाना तेरा, बहुत ही इनिशियल डेज ऑफ सोनू निगम जी का करियर था, एंड दिस इज़ वन अमेजिंग ट्रैक, ब्यूटिफुल ट्रैक कमिंग अप राइट नेक्स्ट. दिस इज़ दीवाना तेरा, बट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड. दिस इज़ आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, एंड विथ मी इज़ RJ
1: JD.
0: एंड जयश्री. स्टे ट्यून्ड.
2: మారింది శ్రీ చైతన్య సిద్ధమైంది.

0: वेल वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 आकाशवाणी पर। पता है आपको कि ऐसे गाने हैं जहाँ हमें ना एक वर्ड जो होता है, पुराने जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड से गाने बनते हैं। तो ये जो वर्ड है सेन्योरिटा, बताओ जेडी कि पहले सेन्योरिटा वर्ड कब सुना?
1: सिन्योरिटा, सिन्योरिटा मतलब हमेशा से ही लड़की बोल के है।
0: हाँ, लेकिन
1: बचपन
0: सुना
1: में ही
0: कब
1: सुना था।
0: कब कब कब कौन से फिल्म में?
1: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा,
0: उससे पहले
1: सिन्योरिटा।
0: सेन्योरिटा बड़े बड़े देशों में छोटी
1: ओ
0: छोटी
1: हो,
0: बातें
1: शिट, कैसे भूल सकता हूँ मैं ये।
0: हाँ, तो वहां से सेन्योरिटा को उठाया गया।
1: जी
0: एंड देन सेन्योरिटा इज, सो स्पैनिश में सेन्योरिटा इज डार्लिंग, एंड हियर वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग सेन्योरिटा, जो तीन हीरो मिलके गाए हैं, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन एंड अभय देओल, राइट? दे सैंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड ट्रस्ट मी, जो भी ये गाना सुनता है ना, डांस करे बिना रुक ही नहीं पाता। हाँ जी, हम भी यहाँ थोड़ा यू नो जिग जिग जिग करेंगे। तब तक एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लेट्स लिसन टू सेन्योरिटा विद मी आरजे जयश्री एंड वी हैव जयदीप। स्टे ट्यून्ड।
2: कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेली लॉ हमें सही राह दिखाती।
3: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
4: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: Odio el calor de tu mirar. Me hace sentir como la más bella señorita.
1: Señorita, आप सुन रहे थे सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. जिंदगी में ना जो मज़ा देता है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो आपको देनी है, लेकिन मैं क्या दूंगी आपको जानकारी. बीबीसी इंटरनेशनल और आकाशवाणी मिलकर आपको देंगे ढेर सारी जानकारी अबाउट क्रिकेट की दुनिया. एंड यस, आप सुनेंगे अभी स्टम्प्ड.

0: रिले प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम न्यू दिल्ली, बस आधे मिनट में, बस 20 सेकंड में, बस आता ही होगा. स्टे ट्यून्ड, दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. स्टे ट्यून्ड फॉर स्टम्प्ड, अ ब्यूटीफुल रिले अबाउट क्रिकेट एंड द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड दिस इज बाय BBC इंटरनेशनल एंड आकाशवाणी.
1: आती रही रेनबो पर रात 9 बजे.

0: फोन रिंग हुआ, वो भी एक अजीब सी आवाज से, अभी अभी हुआ ना जयदीप।
1: वही तो।
0: एग्जैक्टली वो कुछ नहीं था, कुछ इंपॉर्टेंट था, लेकिन इट वॉज जस्ट अ टेस्ट मैसेज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेल, एक्सट्रीमली सिवियर अलर्ट्स हमें ऐसे ही मिलते हैं। इंडिया लॉन्चेस सेल ब्रॉडकास्ट यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टेंट डिजास्टर अलर्टिंग सर्विस फॉर इट्स सिटीजन्स। अलर्ट सिटीजन सेफ नेशन, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द पब्लिक अपॉन रिसिप्ट ऑफ दिस मैसेज। डरने की कोई बात नहीं है, लिए ये अलर्ट भेजने का एक टेस्ट मैसेज था। यानी अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग एस्पेक्ट हो, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का एक तरीका है, कोई डिजास्टर हो, तो हमें अलर्ट्स ऐसे मिल जाएंगे। और वेल, रेडियो तो है ही बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए, और आपको सतर्क करने के लिए, और आपको जागरूक करने के लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। मैं हूँ जयश्री, और मेरे साथ है आरजे जयदीप। जयदीप कहें, जेडी कहें, तो मेरे को जयदीप नाम बहुत पसंद है, लेकिन ही वॉन्ट्स, ही प्रिफर्स जेडी। हम पूछते ना किसी को कि आप कैसे, यू नो, वॉट डू

0: प्रिफर, योर नेम ऑफ प्रेफरेंस जैसे पूछते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हम उनका नाम बदल देते हैं. इफ़ यू रिमेम्बर कि कीरवाणी गारू,
1: जी
0: उनका हिंदी में अगर वो म्यूजिक डायरेक्शन करे तो उनका नाम MM क्रीम हो जाता
1: जी हाँ जी
0: है.
1: हाँ जी
0: तो नाम बदलना, वेल व्हाट्स इन अ नेम जब पहचान उनका म्यूजिशियन और म्यूजिक कंपोजिशन के साथ है. वेल खूबसूरत गाने आ रहे हैं जयदीप, क्या सुनाने वाले हो हमें अभी?
1: अभी आने वाला है वो लम्हे बाय आतिफ।
0: आतिफ असलम. दिस सॉन्ग, इस गाने में प्यार है, इस गाने में दर्द है, लेकिन ब्रेकअप जब होता है ये गाने का फील और हिट अलग ही होता है. आई होप आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो. आई होप ये गाना एक अच्छे मूड में आप सुन रहे हो. हाँ, टेक इट अवे, दिस इज वो लम्हे बाय आतिफ असलम. स्टे ट्यून्ड.

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जी। उमेर खान साहब, आपका गाना हमने प्ले कर दिया, मलंग फिल्म से द टाइटल सॉन्ग। एंड वी हैव वन ब्यूटीफुल मैसेज राइट हियर। हाय जयदीप एंड जयश्री, गुड टू हियर यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। प्रिया इज मैसेजिंग राइट हियर एंड शी वॉन्ट्स टू लिसन टू बदतमीज दिल। बदतमीज दिल फॉर श्योर प्ले करती हूँ। लेकिन जब ये गाना रिलीज हुआ था जयदीप, मुझे लगा कि ये देखो भाई, थोड़े वर्ड्स तो हम बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं ना, लाइक बदतमीज़ या बेखुदा लेकिन जब ये गाने में ही बदतमीज़ हो तो तमीज़ की बात ही नहीं है। और जब मैं गाना सुन रही थी, तुम्हें क्या लगा? लाइक मतलब मस्त हुक स्टेप तो मस्त था।
1: हाँ, बहुत बढ़िया था वो तो।
0: और ये जवानी है दीवानी फिल्म से, लाइक
1: दैट वॉज अ
0: उसके
1: ग्रेट म्यूजिक
0: सारे गाने उस फिल्म के,
1: एक्चुअली।
0: लाइक कबीरा का वर्जन, द रिप्राइज वर्जन।
1: रोना आ जाएगा यार
0: आई नो महफिल में रहने दो, अभी बदतमीज दिल के साथ रह
1: हाँ
0: जाएंगे हम। चलिए जयदीप और मैं आपको सुनाने वाले हैं बदतमीज दिल राइट हियर राइट नाउ। लेकिन गाने के बाद क्या होने वाला है? न्यूज। आप सुनेंगे इंग्लिश और हिंदी में न्यूज। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रेनबो एड्स कलर।
1: टू योर लाइफ।
0: स्टे ट्यून्ड।

0: के साथ मैं लवली निगम। सर्वोच्च न्यायालय ने मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचे की पीठ ने निर्देश दिया कि आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस कदम को चुनौती देने वाले तृणमूल कांग्रेस के लिए निर्णय एक बड़ा झटका है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अधिकारियों का चयन निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर पहले से ही एजेंट और पर्यवेक्षक मौजूद हैं। आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। यह कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सूत्रों के अनुसार पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है। We
1: diversified our sources. हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आगामी मानसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माही में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल

0: वेलकम बैक। नंबर तो आपको पता है, 9140-23234822 जादुई नंबर है। आपके फ़ोन पर आपके इंस्टेंट मैसेज व्हाट्सएप ओपन करके आप ये नंबर पे मुझे मैसेज भेज दो और आपके फ़ोन से उड़ के तुरंत मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा। जी हाँ, ये है हमारा रेनबो का नंबर, जो व्हाट्सएप पर आप मेरे साथ रूबरू हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और ढेर सारी बातें कर सकते हैं। आज तो मैं अकेली नहीं हूँ। जी हाँ, 11 साल से अकेली शो करते करते आपके साथ, यानी आप तो उस पार है ये रेडियो के, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं रहता था। मैं और ये क्लॉक, स्टूडियो क्लॉक हमारा, और मेरे इतने सारे बटन्स कॉन्सोल पे, मेरा माइक और मैं, बस यही थे। आज मेरे साथ मेरे को आरजे है, जिनका नाम है जयदीप, लेकिन खुद को वो JD करके बुलाना चाहते हैं। हाय JD।
1: हेलो हेलो लिसनर्स,
0: इनकी आवाज में कुछ सुकून सा लगता है ना, जैसे बात करते जैसे सुकून से है ना। एंड ही इज ऑल्सो, ही
1: हाँ
0: लुक्स अमेजिंग। जैसे आपको दिख, ऑफ कोर्स आप देख नहीं पाओगे, लेकिन ही हैज अ कैप, ही इज वेयरिंग अ कैप एंड ही हैज अ टीका, क्योंकि उनको शो में आ रहे हैं और पूजा करके आए हैं। एंड ही इज वेयरिंग अ करुंगली माला। इज दैट अ करुंगली माला?
1: इट्स लावा स्टोन्स।
0: ओह, स्पिरिचुअलिटी, अमेजिंग। सो यस, दिस इज जयदीप एंड दिस इज जयश्री राइट हियर। एंड बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं। यो यो करने का मन कर रहा हो तो यो यो हनी सिंह का गाना सुना चाहिए। हाँ जी, लेकिन गाना तो दमदार है, लेकिन गाने का नाम धीरे धीरे है। गाना क्या है, चलिए सुनते हैं। टेक इट अवे।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक लिसनर्स। तो हाँ, इतना खूबसूरत सा गाना धीरे धीरे बाय योयो हनी सिंह, मस्त लगता है। सो गाइस, बहुत बहुत भयंकर गर्मी है बाहर, सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हेल्थ कॉन्शियस बनना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, आज ना एक बहुत ही स्पेशल डे है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। जी हाँ, वो इतने इतने अच्छे और इतने खूबसूरत इंसान थे, उनके लिटरेचर्स, वो एक आइकॉन थे इंडिया के, एक फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, और उनकी एक किताब गीतांजलि, इसको नोबल प्राइज मिला है। एंड उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत सी बातें कही हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस किताब को एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ ज़रूर बदल देगा वो, क्योंकि अपनी सोच ज़रूर बदलेगा वो। तो खैर, हाँ, बाहर तो बहुत भयंकर गर्मी है ही, लेकिन हम थोड़ा सा बारिश वाला गाना सुनते हैं, ताकि खुद को थोड़ा सा ठंडा महसूस करो। चलिए, हम सुनते हैं बारिश फ्रॉम यारियाँ।

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. बौखला जाते हैं, मतलब शब्द नहीं होते जब कोई आपको कुछ ऐसी प्यार देता है, प्यार से कुछ देता है, या प्यार से कुछ कुछ कह देता है और शुक्रिया अदा करता है. और जब कोई शुक्रिया अदा करता है, आपको

नहीं चलता कि आप कैसे रिएक्ट करें, हालांकि वो आपका ड्यूटी होता है जो आपने किया हो। मैं बात कर रही हूँ जब समवन इज़ वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड दे थैंक यू फॉर समथिंग विद ऑल देयर हार्ट, एंड दीज गेस्टर्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ऐसा कब हुआ था कि आप खुशी से कुछ बोल ना पाए? मेरे साथ तो अभी अभी हुआ। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन बातें सारी होंगी 1 o'clock to 2 o'clock, जब हेलो रेनबो चालू हो जाएगा। अभी तो ऊंचे लंबे बातें नहीं करूंगी मैं, लेकिन ऊंचा लंबा कद ये वाला गाना प्ले करूंगी, आनंद राज आनंद की गायकी, एंड हियर वी गो, टेक इट अवे।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ कर दे तो। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। दिल में ना सारे, क्या बोलते हैं, वैसे एक गार्डन में एक ही तरह का फूल या दो तरह के फूल, लेकिन ये जब दिल गार्डन होता है ना तो सारे तमाम कलर्स, तमाम रंगीन कलर्स, सारे फूल आपके मन में ऐसे ही ब्लूम कर जाते हैं और आप बहुत खुश हो जाते हैं और कहीं शर्मा जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। हुआ है कभी ऐसा, तारीफ किसी की आपने सुनी? और मैं ये झूठी तारीफ की बात नहीं कर रही हूँ कि कुछ चाहने के लिए, कुछ कुछ यू नो हासिल करने के लिए आपकी तारीफ कोई कर दे, लाइक भाई आज तो मस्त लग रहा है, जरा 10,000 डाल देना यार। नहीं, वो तारीफ की बात नहीं, दिल से तारीफ। दिल से कोई आपको पसंद करे या आपका काम पसंद करे, वो कहते हैं ना बेटा बहुत अच्छा तुमने किया, बेटा बहुत ही शबाश, मतलब ऐसे ना बड़ों की, बड़ों से जो मिलता है ना वो तारीफ, दैट बड़ों से तारीफ नहीं मिलती, मेरे को लगता है वो आशीर्वाद होता है। मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो सोचती हूँ आशीर्वाद के साथ होता है तारीफ, है ना? जैसे मैं कहीं ये कन्फ्यूजन क्लियर करूँ, आप ये गाना सुनिए, यह है बादशाह और करण की आवाज़ में तारीफा। बहुत ही खूबसूरत गाना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
1: మాటైనా
2: పాటైనా
1: ఏదో ఏదో ఉంది గుండెలో తొల్లు, ఏది అర్థం కాదు పైకి చేతల్లు, ఏ చోటైనా
2: శ్రోతల ఆనందాలగని
1: మధుర గానాల మనోరంజని
2: మన జనరంజని
3: మనసునే మీటకే నేస్తమా।
2: జనరంజనిలో మీకు నచ్చిన పాటను వినాలనుకుంటున్నారా? అయితే ప్రతి బుధవారం ఉదయం 9 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు మాకు కాల్ చేయవలసిన మా నెంబర్లు 0402324 0852, మరొక నెంబర్ 2324 0856। జనరంజని, శ్రోతల మనోరంజని, ప్రతిరోజు ఉదయం 7 గంటల 30 నిమిషాలకు మీ వివిధ భారతి 102.8

हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक। तो हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो से लाइफ रंगीन। तो जी हाँ, आज हम ये एक और इम्पोर्टेंट डे भी मनाते हैं, वो है इंटरनेशनल ड्रोन डे। ड्रोन्स यानी कि एक ऐसे हवाई विमान जिसमें बिना किसी इंसान के उड़ाया जाता है रिमोट कंट्रोल के द्वारा। आजकल बहुत जगह पर, हर जगह पर ड्रोन्स बहुत ही कॉमन हो रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल में। हम डिलीवरी के लिए भी ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, खासकर फार्मर्स पेस्टिसाइड्स डालने के लिए ड्रोन्स यूज़ करते हैं, एंड अपने खेत खेत को देखभाल करने के लिए भी ड्रोन्स यूज़ करते हैं, एंड स्पेशली आर्मी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ड्रोन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये होते हैं ड्रोन बॉम्ब्स वगैरह, जो बिना किसी इंसान के उसको चलाया जा सकता है रिमोट कंट्रोल के द्वारा। खैर, हम अभी एक और ब्यूटीफुल सा गाना बजाएंगे, बन जा मेरी रानी फ्रॉम गुरु रंधावा।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 11.9। 1-2 का 4 यानी एक नहीं, हम दो है यहाँ पे। हमारे RJs का तो एक ही है फंडा कि आपको एंटरटेन रखें और आपको इंफरटेनमेंट दें। और आज वीकेंड है और वीकेंड के टाइम पे हम क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, मस्त चिल मारते हैं। लेकिन लॉन्ग वीकेंड यार, दिस इज़ अ लॉन्ग वीकेंड, बहुत प्लान्स बनाए हुए हैं, आई नो। एंड वीकेंड तो थर्सडे शाम को ही शुरू हो गया है आपका लॉन्ग वीकेंड, आई नो दैट। मेरा प्लान क्या था, मेरा प्लान यहाँ आने का था, आपसे बात करने का था, और कोई प्लान नहीं बनाते हम, क्योंकि हमारा प्राइम प्लान होता है आपसे रूबरू होना और शो जो है वो मस्त जाए। और शो मेरा मस्त तब जाता है जब 1:00 to 2:00 आपसे बातें होंगी। आई एम वेटिंग, एब्सोल्युटली वेटिंग फॉर हेलो रेनबो शो। अंटिल देन, छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक, वेलकम बैक। वेल जनाब, नमस्ते, हेलो, आदाब। मैं आपका स्वागत है, और इस सेगमेंट का नाम है हेलो रेनबो। दिल खुश हो जाता है मेरा जब 1 बज जाता है, सिर्फ शनिवार को, हाँ, जब भी मैं ऑन एयर हूँ, क्योंकि आपके साथ बात करने का मौका जो मिलता है मुझे, और दिल ना खोल के दिल के राज और दिल की जो बातें हैं वो आपसे, मतलब खुशी से मैं डिस्कस करती हूँ, और आप भी वैसे ही करते हैं बिल्कुल। लेकिन ये जो जरिया है आपका और मेरा जुड़ने का, ये टेलीफोन के माध्यम से होगा। अभी तक तो रेडियो के माध्यम से एक तरफा प्यार चल रहा था, अभी टेलीफोन के माध्यम से दो तरफे बातें होंगी, बात की जुगलबंदी होगा, गानों के सिलसिला तो चलता ही रहेगा। वैसे नंबर है 2323-0030, 2323-4821, या फिर 2970-4715। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन बात क्या करें, टॉपिक तो देना ही पड़ेगा। कभी-कभी लगता है कुछ टॉपिक ही ना दूं, लेकिन कभी लगता है कुछ तार छेड़ देते हैं दिल के। हाल ही में ऐसा हुआ कि मेरा एक पुराना वॉलेट था, और उस वॉलेट में शायद मैंने ऐसे ही पापा की एक तस्वीर रख दी थी, और वो वॉलेट मुझे 1 साल के बाद मेरे हाथ आया, और जब मैंने खोलकर देखा तो पापा की तस्वीर, और बिन बताए, बिन इजाज़त के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। आंसुओं ने इजाज़त भी न ली, लेकिन आंसू आने लगे, क्योंकि यादें जो है तस्वीरों से बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है ना। तस्वीर बहुत स्पेशल होते हैं। शायद वो तस्वीर हो जो एक प्रेमिका अपने जिनसे वो प्यार करती है उसका तस्वीर अपनी किताब में रखती है, वो तस्वीर हो, या ऐसा एक तस्वीर जो हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्गों को याद करते हुए हम उनकी तस्वीर लगाते हैं।

सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो यादें बार बार याद दिलाती है, खुशी के लिए दीवारों पे रखी जाती है। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो शायद हम देखना नहीं चाहते और छुपा देते हैं क्योंकि हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, तस्वीरें, एल्बम्स, वो उन दिनों की बात थी जहाँ हमारे पास कैमरा होता था, सिर्फ 34 फोटोज होते थे उसके और हम बोलते थे क्लिक मत करना, रील वेस्ट हो जाएगा। उन दिनों की बात थी जहाँ कैमरा का कैप हम खोलते थे तभी फोटो क्लिक होता था। और फिर तस्वीरों के बारे में बात करती जाऊं तो मेरी बातें छोड़िए, आपकी बातें चाहिए। आप बिल्कुल कॉल कीजिए, तस्वीरों के बारे में बात करेंगे। फोटोज, आपको क्यों फोटो स्पेशल है आपकी लाइफ में, और कौन सा वो एक मेमोरेबल फोटोग्राफ है जो आपके दिल के करीब है ना? एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, तस्वीर तेरी, रफी साहब की आवाज में और लता जी की आवाज में, ये रहा, इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए। मेरे को कॉल करना मत भूलिएगा। मैं हूँ जयश्री, मेरे साथ है आरजे जयदीप। स्टे ट्यून्ड।

0: दिल में तो तस्वीर बहुत सारे होंगे, कभी कभी जब भी मटे जैसे ना, वो तस्वीर फाड़ के जला भी देते कभी कभी, जो भी हमें हमारा दिल दुखाते हैं। चलिए लेट्स सी हुज ऑन द लाइन। हेलो रेनबो।
1: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी।
0: सर, है किधरा?
1: ब्रह्मा
0: सुपर सर, सुपर। फर्स्ट
1: सभी
0: कॉलर श्रीनिवास राव सर फ्रॉम मलकपेट। हाउ आर यू सर?
1: थैंक यू थैंक यू। नॉट डन एनीथिंग। थैंक यू। तो मैडम हाउ आर यू?
0: आई एम गुड सर, वेरी गुड।
1: या बिकॉज
0: एंड
1: वेरी हॉट समर यू आर कमिंग।
0: हॉट
1: वेरी
0: समर,
1: वेरी
0: कोल्ड विंटर, रेनी, नो
1: कूल वेदर।
0: प्रॉब्लम, वी आर देयर फॉर
1: एसी
0: रेनबो एफएम।
1: रूम ऑटोमेटिकली कैन एंजॉय।
0: यस यस
1: या तो
0: यस सर
1: आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है। तो
0: जी।
1: हमारे को बहुत ही पसंद पुराने फोटोज। हम बचपन के भी फोटोज अभी भी है, अभी भी निकल के लगाए से है। हमारे शादी का मेरा 82 में शादी हुआ। शादी के भी फोटोज
0: वेरी
1: भी है।
0: नाइस।
1: हमारे सिस्टर के भी शादी 81 में उसको करके मैं 82 में मई कर लिया था। तो वो फोटोज भी हमारे पास ही थे।
0: तो
1: हम
0: तब
1: निकाले
0: के
1: बोल के ब्लैक
0: फोटोज जो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, उनके
1: एंड
0: पीछे
1: व्हाइट नहीं,
0: एक
1: ब्लैक एंड
0: ब्लैक
1: व्हाइट
0: कलर का कार्डबोर्ड टाइप होता था ना, प्लास्टिक
1: नहीं,
0: वाले
1: नहीं
0: नहीं
1: कार्डबोर्ड
0: होते
1: कुछ
0: थे।
1: नहीं, अच्छा
0: हाँ
1: ही रहता था। मैं पेपर मोटा ही रहता था। तो
0: अच्छा।
1: मेन थिंग क्या है, मेरा दोस्त है कि उन्हें दुबई गया था।
0: हाँ
1: दुबई से उन्हें ये ला के दिया, एक
0: एल्बम
1: रील ला के दिया। तो
0: रील।
1: कलर
0: अच्छा
1: फोटोज जब वो लोग बोले अरे
0: ओ,
1: अन्ना तुम्हारा किस्मत खिल गया,
0: 83
1: कलर
0: में
1: फोटोज में
0: आपने कलर
1: निकाल ले
0: फोटोज
1: रहे।
0: लिए? अरे
1: नहीं, है मतलब मैंने दुबई
0: वाह।
1: से मेन थिंग यार रील्स नहीं मिलते थे। हाँ
0: अच्छा
1: तो
0: ओके।
1: उन्हें वहाँ दुबई गया था, दुबई से उन्हें ला के दिया था। मेरे कहा ना
0: क्योंकि
1: मैं कुछ
0: मेरे
1: भी
0: मम्मी पापा की शादी भी 83 में 84 में हुई थी, एंड आई डोंट रिमेम्बर कि एक भी कलर फोटो है उनका, सारे ब्लैक एंड
1: नहीं,
0: व्हाइट है।
1: बिकॉज दैट टाइम इवन इवन स्टूडियो पीपल ऑल्सो दे नीड दे डोंट वांट टू कीप दी रील्स एट ऑल, बिकॉज वो जब मिलता नहीं था
0: एक्सपेंसिव भी
1: तो
0: होता था शायद।
1: बॉम्बे से आना जाना वो प्रॉब्लम कुछ थे। तो
0: जी
1: इसीलिए कोई भी नहीं मंगा रहे थे। मेरे को
0: जी
1: अच्छा याद है ना। तो
0: हाँ
1: उन्हें बोला अरे अन्ना तुम्हारे को मैं कुछ भी नहीं दे सकती, बट आई विल गिव दिस
0: ओ दैट इज अ
1: कलर
0: बिग
1: रील
0: गिफ्ट
1: बोल के मेरे
0: सर,
1: को
0: दैट्स
1: दिया
0: सच अ
1: था।
0: मेमोरेबल गिफ्ट।
1: या तो वो वैसी निकाल के लगाए तो है। बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स है मेरे
0: जी
1: अभी
0: जी
1: भी। जब भी अभी भी इवन टिल टुडे ऑल्सो येस्टरडे ऑल्सो हम एक एक्टिविटी करे थे हमारे पार्क में। तो फोटोज में लगाए निकाले
0: वेरी
1: बहुत ही
0: नाइस,
1: फोटोज निकाल के लगा दिए। पच्चीस
0: प्रेशियस फोटोज है।
1: पचास फोटोज है। वो तो लगाना वो तो मुश्किल हो रहा। तो
0: अभी
1: क्या इधर लेके आना करना
0: कब
1: उसका
0: ना
1: भी
0: सर स्कैन करके फोन में लगा रहे हैं, सब फोटो
1: क्या
0: स्कैन करके
1: वो
0: सेव कर रहे हैं
1: अपने
0: क्लाउड
1: को
0: में।
1: जमता नहीं दूसरे किसके तो बच्चों को बोल दिया तो और लगा
0: जी
1: रख लेते। जब होना उसके पास से ले लेके बता दे रहा था। तो ऐसा तो
0: जी
1: बिकॉज पुराने फोटोग्राफ्स हमारे हमारे मेन थिंग आप बोले वैसा मेरे को यादगार का फोटो हो तो हमारे एक योगा गुरु जी है नाउ ही इज 107।
0: ही इज 107 years old।
1: यस 107 ईयर ओल्ड। इज
0: वाओ।
1: एन डिस्टिंग गुजराती पर्सन
0: हाँ
1: रतन लाल जाजू। तो
0: हाँ
1: प्रीवियसली वॉज ईयर ओनली इन मलकपेट ओनली यशोदा के हॉस्पिटल
0: सो
1: के
0: देखा,
1: बाद में
0: योगा का
1: रहते थे।
0: कमाल, आप योग करोगे तो बहुत 100 साल से ज्यादा आप किसी और को
1: यस यस
0: शिक्षा भी
1: यस
0: दे
1: यस
0: सकते हो और
1: यस। अब
0: भरपूर
1: उनका
0: जीवन
1: थोड़ा
0: भी जी
1: बहुत
0: सकते।
1: याददाश्त चले गया बट
0: जी
1: ही विल रिकॉग्नाइज द पीपल। मतलब हम बहुत ही उनके नजदीक थे बोल के उन्हें अच्छा पहचानते। अब
0: वंडरफुल।
1: उनका याददाश्त भी थोड़ा थोड़ा
0: आई
1: चले
0: विश आई
1: रहा।
0: कैन
1: उनका
0: टेक
1: बच्चा
0: हिज
1: वही बोल
0: ब्लेसिंग
1: रहा।
0: सम टाइम।
1: तो
0: यस
1: ऐसा ऐसा है। तो
0: वंडरफुल।
1: उनका फोटोग्राफ भी मेरे पास हम परसों जाके निकाल लिए थे उनके घर को जाके। कह के बोलते 107 ईयर्स का वो तो कोई मजाक की बात नहीं है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: नहीं,
1: इसीलिए
0: वन
1: वो
0: नॉट
1: अपन
0: एट
1: रख लेना।
0: बर्थडे अच्छे से मनाएंगे आप उनका।
1: यस यस यस कंपल्सरी
0: राइट
1: में।
0: सर,
1: तो
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू माँ,
0: हैव अ
1: थैंक यू वेरी
0: ग्रेट
1: मच माँ
0: सैटरडे, बाय बाय।
1: गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।
0: थैंक यू सर। ऑल राइट, लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। हेलो रेनबो।
1: हेलो नमस्ते जय श्री जी।
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: मेरा नाम मुमताज है, हसमतपुर।

0: से बात कर रही हूँ।
1: अरे मुमताज जी, बहुत दिन
0: हाँ
1: के बाद,
0: मैं
1: कैसे सब?
0: इतने
1: खैरियत?
0: इससे पहले
1: हस्मत?
0: काल बहुत लगे, आप उठाए नहीं,
1: अरे
0: अपने
1: नहीं,
0: काम में बिजी हो
1: तो
0: गए,
1: मुमताज
0: अड़बड़े
1: जी
0: लगा दे रहे।
1: बिल्कुल बिजी नहीं
0: हाँ
1: है। तो मुमताज जी, क्या होता है, एक
0: जी
1: बड़ा सा हमारे पास
0: जी
1: फोन है,
0: मुमताज जी साहब।
1: वहां पे लाइट्स आते हैं, तो कौन कॉल कर रहा है पता ही नहीं चलता। तो ऐसा
0: वो
1: है,
0: गाने लगा दे रहे थे, मेरा रिंग बज रहा बज रहा, कम से कम 4-5 बार कर दी।
1: कब कब?
0: अरे या

0: कब
1: अरे
0: कब?
1: दो तीन हफ्ते पहले, दो
0: दो तीन हफ्ते
1: हफ्ते
0: ना
1: पहले,
0: अभी? अरे
1: हाँ दो
0: अभी
1: हफ्ते
0: आज
1: पहले।
0: आज बोलिए कौन सा
1: हाँ
0: गाना चाहिए आपको, हम प्ले
1: अभी
0: करेंगे।
1: तो गाना देखो मेरे को बोलने के बहुत याद नहीं आता, तस्वीर
0: कोई नहीं ममता जी,
1: के मेरे
0: तस्वीरों के
1: चार
0: बारे में बताइए, आपकी कौन सी
1: हाँ
0: वो खूबसूरत तस्वीर है जो आप अभी भी
1: तस्वीर
0: अपने
1: तो ऐसी
0: पास?
1: है देखो, जय श्री अट्टे की जो तस्वीर होती पेंटिंग की, वो तस्वीर की तो बाजू रख दे सकते हम बाजू,
0: हाँ
1: मगर दिल में जो तस्वीर होती उसको तो बाजू रखना बहुत मुश्किल हो जाता,
0: अब्बा क्या बोले क्या बोले।
1: बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
0: जी
1: मेरे दिल में तो बहुत बुरी तरीके से बसी रहते है, हमारे माँ बाप के भी है, पति का भी है, बहनों
0: जी
1: का है, दो बहना है, बस उनके लिए दुआ करना है। और शेर
0: बिल्कुल,
1: खान भाई
0: प्लीज
1: को मेरे
0: दुआ
1: तरफ
0: कीजिए।
1: से सलाम,
0: शेर खान
1: अब
0: भाई
1: सुनिए
0: की
1: मैं,
0: आवाज सुन के बहुत दिन हो गए, लेकिन
1: हाँ करते
0: बिल्कुल
1: रहे
0: जहाँ
1: होंगे,
0: बेबी
1: जैसे
0: है
1: कॉल
0: वो खुश
1: करते
0: है।
1: रहते, हो
0: जी
1: सकता
0: जी
1: करे तभी करे होंगे, करते होंगे।
0: बिल्कुल
1: मैं आप
0: बिल्कुल।
1: मेरी पसंद तो आपकी पसंद है, आप अच्छे गाने लगाते, मेरे
0: हाँ
1: तरफ से कोई
0: आज थोड़ा हम
1: तस्वीर का
0: किशोरदा रफी साहब की
1: हाँ
0: आवाज के
1: रफी का ही
0: साथ।
1: पसंद मेरे को, रफी का लता का है, तो
0: जी
1: कोई अच्छा तस्वीर वाला गाना लगा दो, ठीक
0: बिल्कुल,
1: है।
0: चलिए। हाँ
1: बहुत बहुत
0: खुदा
1: शुक्रिया, अच्छा
0: हाफिज,
1: लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत बहुत
0: मुझे
1: दिन हो गए
0: भी।
1: आपसे बात
0: जी जी
1: करके,
0: जी थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह
1: थैंक यू।
0: हाफिज। ऑलराइट, हेलो रेनबो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब, जय श्री जी।
0: गुड आफ्टरनून, आपका नाम बताइए सर जी।
1: अभी अभी तो याद किया मुमताज भाई
0: शेर
1: ने।
0: खान साहब कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आपकी दुआ है, मुमताज बहन की
0: अरसों के
1: दुआ है,
0: बाद आपका
1: अल्लाह का
0: कॉल आया,
1: शुक्र है। जो भी है बिल्कुल हर हाल में शुक्र अदा करना है।
0: आपकी
1: और मैं
0: तबीयत
1: भी
0: कैसी
1: सभी
0: है?
1: भाई बहनों को, दोस्तों को, आपको प्यार भरा सलाम कह के अल्लाह से दुआ करता हूँ,
0: जी
1: सबके हर जायज मकसद तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे हमेशा सभी को।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और
1: जी
0: तस्वीरों के बारे में बात कर रहे हैं शेर खान साहब, बताइए।
1: बिल्कुल, वही मेरा भी मिला जुला जवाब है मुमताज बहन के जैसा, कि हम तो ब्लाइंड है तो हमने, हाँ, तस्वीरों को बहुत बचपन से देखा, हाथों से छुआ, हाथों, और हमारी भी बहुत सारी बचपन में, मेरे पापा मेरी भी बहुत सारी मेले में इधर उधर ले जाके बहुत सारी तस्वीरें निकालते थे, बहुत
0: जी
1: सारे घर के हमारे आंटी जो है भाई लोगों सब बोलते थे बहुत अच्छा दिखता है, स्मार्ट दिखता है, ये वो
0: जी
1: सजा मजा के कोई, और कोई बड़े हीरोइन के बाजू के उसके साइड में जिसकी तस्वीर रहती थी उसके साइड में लगा के उसको अटैच करके मेरी तस्वीरें बहुत सारी काटते थे।
0: अच्छा, उन दिनों में
1: और
0: एआई करते थे उन दिनों
1: हाँ
0: में पूरा
1: बिल्कुल,
0: ग्राफिक्स करते थे, वेरी
1: हाँ
0: नाइस।
1: वो कैमरे वाला फोटो फोटो स्टूडियो में जाना बहुत खुशी का माहौल था बचपन में, होता था बस बचपन में ही काटे, और एक एल्बम सजा हुआ था, और मेरी जब मतलब 4 साल की उम्र में आंखें गई तो एक
0: जी
1: आंख वाला भी फोटो था उसमें
0: ओके,
1: बचपन
0: हाँ
1: का, तो वो मेरे पापा वो बहुत दिनों तक उसको रखे, फिर पता नहीं बाद में कहाँ खो गया,
0: जी
1: और बाद में जैसे बड़े हो गए तो फिर मैं तस्वीरों को तो मतलब मैं देख नहीं सकता, तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन
0: जी
1: मेरे लिए भी वही तस्वीर है जो भी है, मेरे नाना नानी दादा दादी जो बुजुर्गों से मुझे बड़ों से प्यार मिला है,
0: जी
1: फिर हमारे दोस्त अहबाब जो भी है जो घर के बड़े होते हैं या दोस्त होते हैं जिनसे हम मिले जुले जो लम्हे हैं
0: जी
1: यादों के, तो वो पूरे दिमाग में दिल में आ जाते हैं जिंदे, बिल्कुल पेपर वाली तस्वीर के नहीं, एक यादों के शक्ल में हमेशा याद रहते हैं,
0: यादों की
1: दुआओं में याद
0: तस्वीर,
1: रहते हैं,
0: ऑफ
1: जो इस दुनिया
0: कोर्स
1: से चले गए वो भी दुआओं में याद रहते हैं, और
0: जी
1: जिससे हम बिछड़ गए या थोड़ी दूरी है या फिर मिलना जुलना रहता भी है, उनके साथ गुजारे हुए यादगार लम्हे जो होते हैं वो सब एक तस्वीरों की तरह ही एक यादों के जब इसमें खो जाते हैं, यादों में जब दुआओं में याद करते हैं या बैठते हैं तो वो सारी बातें, वो सारा जो मेल जोल रहता है वो सब याद आता है, वो भी एक
0: जी
1: बेहतरीन तस्वीर है जो याद, याद की शक्ल, तस्वीर
0: यादें,
1: का नाम
0: यादें
1: है
0: भी
1: यादों में रहना
0: तस्वीर,
1: है। वो
0: जी
1: पेपर वाली
0: बिल्कुल
1: तस्वीरें देख के तो कोई शायद उसको रिजेक्ट कर देता होगा, कोई संभाल के रखता होगा, लेकिन यादों में जो तस्वीरें रहती है जिनको दुआओं में याद किया जाता है वो असल तस्वीर होती है। जी
0: जी, सही बात है, दुआ में याद करें
1: तो
0: वो
1: हमारी
0: असल
1: भी यादों में
0: तस्वीर।
1: बहुत सारी है, और आपसे बात होती या भाई बहनों से, दोस्तों से, किससे भी बात होती, ये भी हमारे लिए, हम भला ही नहीं देख सकते लेकिन हमारी दिल की आंखें जो है ये वीडियोग्राफी कर लेती है, कि ये हमारे लिए ये तस्वीरों से भी ज्यादा अहम है।
0: बिल्कुल, दिल की यादें से
1: हाँ
0: तस्वीर, बहुत ही
1: बिल्कुल,
0: खूबसूरती के साथ
1: दिल एक
0: आपने
1: आईना
0: बताया।
1: है, उसमें हम अपने आप को भी देख ले दिखाई देता है हमको, और जिनके साथ जो वक्त गुजरा है वो भी दिखाई देते हैं हमको,
0: जी
1: और
0: जी
1: दिल से होती है वो।
0: सही बात है शेर खान साहब, थैंक यू सो मच आपने कॉल
1: बहुत
0: किया।
1: बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी 2-2.5 महीने के बाद बात हो रही
0: जी
1: है।
0: जी जी

0: ऑलराइट, वेलकम बैक. नंबर्स तो आपको पता ही है, 2323030, 2323482129704715. लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन. हेलो रेनबो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून.
1: हाँ, गए हफ्ते से कबड्डी खेल रही हूँ मैं। आप
0: अरे
1: लगा देखो,
0: नाराज मत
1: आप आए
0: होइए.
1: वक्त निशा आए वक्त बहुत मुश्किल हो रही। दोनों
0: अरे सॉरी.
1: जान है रेमबो की और
0: थैंक
1: हम लोगों की।
0: यू सो मच. आप तो जान के, आप तो दिल दिल की धड़कन है रेनबो का, हमारे लिसनर्स.
1: थैंक यू थैंक यू।
0: जी
1: वो मुंशिफ अखबार से मेरे को कोटे कैमरा उठा था, तो का नाम भेजे तो
0: क्या
1: तीन रोल
0: बात
1: थे,
0: कर रहे,
1: तीन रीला थे उसमें,
0: क्या
1: छत्तीस
0: बात
1: के
0: कर रहे,
1: उसके सब
0: लकी
1: जगह के
0: ड्रॉ.
1: फोटो आली हुई।
0: अरे वाह. और पूरे
1: पूरे
0: क्लीन करा के, मतलब
1: पूरे फोटो है, सालाजंग म्यूजियम के, वहाँ के, यहाँ के, जहाँ गए उनके घरों के। शेर खान भाई की भी बर्थडे करी थी, उन्होंने बोले कोई भी ना करे मेरी बर्थडे, आज तक मेरे को मालूम इसमें बर्थडे क्या है।
0: कब
1: फोटो
0: है
1: वहां लेके
0: कते.
1: आई थी, शेर खान भाई को केक कटाई, फूला पिलाई, तो वही बोल रहे थे ना, दिल में यादें हैं बोले।
0: अच्छा,
1: हमारे
0: थैंक
1: रेडियो
0: यू.
1: चार मीनार के है ये, शेर खान
0: अरे
1: भाई, अकबर भाई,
0: थैंक
1: ये
0: यू.
1: तो। और
0: देखो
1: मेरे भी
0: भाई,
1: बचपन के भी है, बहन के गोद में है, सब फोटो वो से निकाल लेके बैठे सारा दिन लग जाता।
0: हाँ सारा दिन लग जाता, सारी
1: पूरे
0: यादें आ
1: का
0: जाती, कभी कभी लोगों को
1: पूरे
0: मिस
1: तो
0: भी करते.
1: हमला मैसूर गए थे हमारे हस्बैंड के साथ, मैली हस्बैंड के जी।
0: पैलेस के सामने लिए, फिर
1: हाँ
0: मैसूर के पैलेस के सामने लिए फोटो.
1: हाँ लिए हस्बैंड के लिए, मैं नहीं ले सकी, मैं मेरे कैमरा मेरे पास था तो
0: जी
1: पुणे
0: जी
1: में लेने नहीं आता, कोटे कैमरा ले गई थी।
0: वो टाइम पे सेल्फी भी नहीं था
1: हाँ,
0: ना.
1: 36 की थी जब रील, तीन
0: जी
1: मिले
0: जी
1: थे मेरे को कैमरे के साथ फ्री
0: अरे
1: में,
0: वाह.
1: अल्लाह दिला देता सबके
0: जी
1: साथ
0: जी जी
1: अच्छा करते। हमारी सहेली भी बोलते रेडियो चार मीनार के, अस्मा जी,
0: जी जी जी जी
1: क्या बोलते मेरे को, जापान की गुड़िया है बोलते।
0: जापान की गुड़िया.
1: बहुत दिन के बाद बात हुई, आपको छोड़ना दिल ने मरा, जन सबको मौका देना है, थैंक यू।
0: थैंक यू. लापिस जिंदा दिली से जो बात करते हैं, वेरी ब्यूटीफुल. लेट मी सी हुज ऑन द लाइन. मतलब फोन का ये जो लाइट है वो बंद ही नहीं हो रहा है, इतने सारे कॉल्स. हेलो रेनबो. ऑलराइट, हेलो रेनबो. ओके, हेलो रेनबो.
1: जैसी मैडम गा रहे ना,
0: आ नमस्ते अंडी. हेलो नरू रमेश
1: चाल
0: गर
1: बोन अनमा, मेरे लाओ नरमा,
0: सुपर.
1: आउनमा
0: వేరే ఆర్జే కూడా ఉన్నారు కానీ కొంచెం,
1: అవునమ్మా,
0: నేను
1: నేను
0: కాల్స్
1: జాబ్ చేయటం
0: తీసుకు.
1: ఈరోజు
0: ఫోటోస్ గురించి అండి, తస్వీర్ అంటే ఫోటోస్ ఎన్ని గుర్తులు మనకి, మనం పోయిన
1: ఓకే
0: వాళ్ళు
1: మేడం,
0: కూడా.
1: ఓకే మేడం.
0: ఏ ఫోటో మీకు చాలా
1: సార్
0: మనసుకి దగ్గరగా ఉన్నది?
1: సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్?
0: హలో.
1: ఆర్జే,
0: ఆయన లేరు ఇప్పుడు స్టూడియోలో, బయటకు వెళ్ళిపోయారు.
1: ఓకే ఓకే మేడం. అంటే ధన్యవాదాలు మేడం. కే రమేష్
0: జయదీప్ ఆయన
1: మాట్లాడుతున్నాను.
0: పేరు.
1: కే రమేష్ మాట్లాడుతున్నాను మేడం. 1977 లో మా మ్యారేజ్ అయింది మేడం. అయితే మా ఫ్రెండ్ది హోల్సేల్ షాపు, ఉల్లిగడ్డలది షాప్ అనమాట,
0: ఏం షాప్?
1: ఉల్లిగడ్డలు ప్యాక్.
0: ఓకే.
1: అయితే వాళ్ళ పన్నోళ్ళతో చెప్పి చిన్న చిన్న

0: राइट, चैन कैसे आ जाए अगर पास आ गए तो, क्योंकि जैसे वक्त पास आ रहा है मैं बेचैन हो रही हूँ. वेल, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. बेचैनी बिल्कुल मेरे तक ठीक है, लेकिन मेरे कॉलर्स तक नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं नेक्स्ट फोन कॉल अटेंड कर रही हूँ. हु इज ऑन द लाइन? हेलो रेनबो.
1: हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम
1: नया नाम जीनत
0: जी? जीनत. कहाँ से बोल रही
1: जी,
0: हैं?
1: मैं हैदराबाद काचीगुड़ा। हाँ
0: काचीगुड़ा. अरे पास में ही है हमारे स्टूडियो के. वेरी नाइस. पहली बार कॉल
1: जी,
0: कर रहे हैं
1: मैं
0: आप? पहली

0: बार कॉल कर रहे हैं?
1: जी।
0: अरे वाह, नाइस नाइस, वेलकम टू आवर रेनबो फैमिली जीनत।
1: थैंक
0: एंड
1: यू।
0: व्हाट डू यू डू, क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती।
0: सुपर नाइस, सबसे मस्त काम है सबका ख्याल रखना। पता है उससे ज़्यादा बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो काम करते हैं ना वो खुद का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, और आप जैसे जो हेल्प करते हैं उनकी वजह से वो तंदुरुस्त रहते हैं, है ना? तस्वीरों के साथ आपका क्या नाता है, क्या रिश्ता है?
1: मैं आपको 1:30 बजे से कॉल कर रही। दिल
0: आई एम सो सॉरी, क्या अभी कनेक्ट
1: हरी
0: हुआ?
1: उतारे में गाने चल रहे हैं।
0: जी। तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे, बहुत सारे मल्टीटास्किंग करना होता है, हमें लिखना होता है, मैसेजेस पढ़ना होता है, तो उसकी वजह से हम एक और गाना प्ले करके आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, तस्वीरों के साथ क्या रिश्ता है आपका?
1: तस्वीरों से तो ज्यादा कनेक्ट नहीं हूँ मैं, क्यों बोल तो मैं ब्लाइंड हूँ।
0: ओके,
1: ठीक
0: सो एनी फोटोज दैट यू रियली हैव, जो आपने संभाल के रखे हैं?
1: है जी। हाँ, पुराने फोटोज है हमारे मम्मी बाबा के, ये सब के। तो हमारे पूरे बड़े तो रहे नहीं, कोई बहना
0: जी,
1: भाया है हम लोग, बस कोई नहीं है।
0: ऑल
1: इस समय
0: राइट,
1: के सुनते हैं।
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग जीनत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: अच्छा, मेरे को गाना चाहिए एक।
0: बोलिए ना।
1: ऐ दिल तुझे कसम है, ऐ दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हार ना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना।
0: कोई फिल्म का नाम बोल सकते हैं?
1: नाम तो याद नहीं, गाना याद है।
0: ए दिल तुझे कसम है ना?
1: हाँ, हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना।
0: मैंने तो ये गाना कभी नहीं सुना, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं ना, लता जी की आवाज़ में ये गाना है, आप जैसे बोल रहे हैं मेरे को
1: हाँ
0: सुनने को मैं बेताब हो रही हूँ बिल्कुल। ये
1: जी
0: आई थिंक 1949 का गाना है, और
1: जी
0: फिल्म है दुलारी,
1: अच्छा
0: मधुबाला जी का
1: जी
0: पिक्चराइज्ड। वेरी नाइस, हम ये
1: जी
0: गाना
1: जी
0: ढूंढते, आप सुनते रहिए,
1: जी
0: स्टे
1: जी तबीयत
0: ट्यून्ड। इस
1: सही नहीं है, आवाज सही नहीं है यार।
0: जी
1: तबीयत
0: आवाज़ सही नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो समझ आ रही है आपकी
1: सही नहीं
0: आवाज़।
1: है। हाँ
0: थैंक यू जीनत
1: जी
0: जी,
1: जी थैंक यू।
0: टेक
1: टाइम दिया
0: केयर,
1: आप।
0: या धन्यवाद। ऑल राइट, वी रीच द एंड ऑफ आवर शो, लेकिन गाना तो बिल्कुल प्ले करना ही है, बहुत ही खूबसूरत गाना, गाने की रिक्वेस्ट हमें आई है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और फिर हम गाना प्ले करेंगे, आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड। दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, स्टे ट्यून्ड।
2: నేడు తెలంగాణ ఎస్ఎస్సి 2026 ఫలితాలలో శ్రీ చైతన్య స్కూల్ స్టేట్ టాప్ 600 కి 597, నిన్న జెఈఈ మెయిన్ ఓపెన్ కేటగిరీలో 2 ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకులు. ఇక స్కూల్ ఫౌండేషన్ అంటేనే శ్రీ చైతన్య స్కూల్.

0: తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన April 26 నుంచి June 9 వరకు, May 11 నుంచి June 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎన్యూమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
1: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
2: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. बहुत सारे फोन कॉल्स के साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं. जी हाँ बिल्कुल, अश्विन जी कोटी कुशाल मार्केट से मैसेज करते हैं. उनके चार लाइन बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत ही अहम होते हैं, तो मैं पढ़कर सुना देती हूँ. तो अश्विन जी कहते हैं, धैर्य एक कड़वा पौधा है, धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर इसका फल बहुत मीठा होता है. जी हाँ, मैं यही मनोकामना करती हूँ कि आप सभी धैर्य के साथ आगे बढ़ें. जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी संकल्प आप ले रहे हो, धैर्य के साथ हमेशा आगे बढ़ें, क्योंकि उसका फल जो है मीठा होता है. और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे. हेलो हाय वाले मैसेजेस. गानों की फरमाइश, बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि गानों की फरमाइश मैं नहीं प्ले कर सकती ज़्यादा. सरवर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत मैसेजेस भेजने के लिए. एंड यस, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं मेरे को, मिस कॉल्स. मैं फ़ोन कॉल्स बिल्कुल फ़ोन पर ही ले सकती हूँ, व्हाट्सएप पर नहीं. वेल, आज बहुत ही मस्त वाला शो था मेरे साथ और मेरे आरजे, मेरे को आरजे मैं कहूँ, जेडी, जयदीप. तो जयदीप, कैसा लगा शो?
3: बहुत खूबसूरत, और आपके साथ तो बेस्ट था. एनर्जी देखो यार आपकी, आए हाय.
2: अरे हम सारे आरजेस की एनर्जी ऐसी होती है क्योंकि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंफोटेनमेंट, और वो इंफोटेनमेंट हमारे लिसनर्स तक पहुँच जाए, उनका दिन अच्छा चला जाए. और पता है हमारी कमाई क्या है जयदीप? हमारी कमाई पता है क्या है? हमारी कमाई है उनकी मुस्कुराहट.
3: जी, ये बात
2: उनकी
3: बिल्कुल
2: बस
3: सच
2: एक मुस्कुराहट. वो अकेले होते हैं अपने घर में, कहीं भी अगर हमारी बातें सुन के वो मुस्कुरा देना, बस वही हमारी कमाई है. इसके साथ मैं और जयदीप इजाज़त लेते हैं. और हाँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बी काइंड टू एनिमल्स. बहुत धूप है, छोटा सा पानी का बोल आप घर के बाहर रख दीजिए या बालकनी में रख दीजिए बर्ड्स के लिए या कम्युनिटी डॉग्स और कैट्स के लिए. और कभी भी कोई जानवर को आप देखते हैं इंजर्ड एनिमल को, बिल्कुल अपने नियर बाय शेल्टर्स को और एनिमल हॉस्पिटल्स को फ़ोन कीजिए और मदद कीजिए उनकी, क्योंकि उनका उनके हम ही हैं और उनके कोई नहीं है. हमें उनका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी एनिमल्स आर आर एनिमल्स, राइट? सो ऑल्सो अडॉप्ट, डोंट शॉप. स्टे ट्यून्ड. दिस इज आर जे जयश्री एंड आर जे जयदेव साइनिंग ऑफ.
0: నేడు తెలంగాణ ఎస్ఎస్సి 2026 ఫలితాలలో శ్రీ చైతన్య స్కూల్ స్టేట్ టాప్ 600 to 597, నిన్న జేఈఈ మెయిన్ ఓపెన్ కేటగిరీలో 2 ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకులు. ఇక స్కూల్ ఫౌండేషన్ అంటేనే శ్రీ చైతన్య స్కూల్.

0: जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
2: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: మన జనరంజని.
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान.
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण.
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध. डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें. न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.

दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपका दोस्त उसामा। सबसे पहले आज नैरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बता देते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ होगा हर्फ ताबिंदा से, तहरीर पेशकश होगी मोहम्मद उसामा की। उसके बाद प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते के तहत आप सुनेंगे खूबसूरत फिल्मी नगमे, और प्याम शब के साथ प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होगा। तो आइए, और आखिर में इख्तिताम पज़ीर होगा और प्याम शब में तहरीर पेशकश होगी जैदी साहब की। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हर्फ ताबिंदा से, तहरीर पेशकश है मोहम्मद उसामा की। तो समाप्त कीजिए हर्फ ताबिंदा।

कहते हैं जिसकी जुबान अच्छी होती है उसे हर जगह इज्जत मिलती है, और जिसकी जुबान खराब होती है वो हर जगह जलील व ख्वार और रुस्वा होता है। जुबान इंसान को मिलने वाली बड़ी नेमतों में से एक है। किसी शायर ने जुबान के बारे में क्या खूब कहा है, कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, रखी नहीं है इसलिए हड्डी जुबान में। इसलिए

दोस्तों, फिल्म मुगले आजम से आपने सुना ये मशहूर नगमा। दोस्तों, फिल्मी गीतों का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और इसमें हम सुनेंगे खूबसूरत फिल्मी नगमे और आपको ऐसे नगमे सुनाएंगे जो आपको माजी की यादों में ले जाएं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका, ये खूबसूरत गीत आपने सुना। जैसा कि हमने बात की थी कि हम इन गीतों के साथ साथ बात करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, यानी ख़ुद को बेहतर बनाने का सफ़र। आज के दौर में एक सेल्फ डेवलपमेंट नाम का लफ्ज़ ज़्यादा सुना जाता है, यानी ख़ुद को बेहतर बनाने के सिलसिले में हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, यानी वीडियोस देखते हैं और बहुत से तकरीरें सुनते हैं, बहुत से अखबार या कोटेशंस भी सुनते हैं और पढ़ते हैं और कुछ देर के लिए जोश में आ जाते हैं, बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, लेकिन चंद दिन बाद सब कुछ वैसा ही हो जाता है। इसके पीछे क्या वजह है, हम इस पर बात करेंगे, मगर पहले आप सुनिए ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों 101.9 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते के तहत खूबसूरत फिल्मी नगमे।

हमारे इस नगमों के सफ़र में हम नगमों के साथ साथ एक अहम टॉपिक यानी सेल्फ डेवलपमेंट पर भी बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि हम मोटिवेशनल स्पीच सुनकर बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत देर तक हमारे अंदर बाकी नहीं रहता। सेल्फ डेवलपमेंट की बात में सबसे अहम बात यह है कि हम अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाती है और ज़िंदगी में आगे लेकर भी जाती है। हमारी गुफ्तगू का सफ़र जारी रहेगा, पहले सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

0: दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते के तहत खूबसूरत फिल्मी नगमे, ऐसे खूबसूरत फिल्मी नगमे जो आपको माजी की खूबसूरत यादों में ले जा रहे हैं। दोस्तों हमारा ये सफ़र बहुत ही दिलकश है और फिल्मी नगमों की तरह ही खूबसूरत है। दोस्तों हम इस प्रोग्राम में गीत के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन पर भी बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट में डिसिप्लिन का क्या रोल होता है, इस पर हम बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल डिसिप्लिन हमें उस वक्त भी काम करने पर मजबूर करता है जब हमारा दिल ना करे, जबकि मोटिवेशन कहती है आज मूड है तो काम करो, डिसिप्लिन कहता है चाहे मूड हो या ना हो काम तो करना होगा। इन बातों और नगमों का ये सफ़र जारी है। पहले आप सुनिए ये खूबसूरत गीत।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी
2: तो क्या कहा आपने।
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू।

दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दोस्तों, फिल्म कर्मा से आपने ये नगमा सुना। गाया था कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ ने। दोस्तों, 101.9 FM पर प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते में आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे, ऐसे नगमे जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। और इस प्रोग्राम में इन नगमों के साथ साथ हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और सेल्फ डेवलपमेंट पे हम बात कर रहे हैं और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। हकीकत यह है कि ज़िंदगी में कामयाब वही लोग होते हैं जो मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते, बल्कि डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो आप भी तय कीजिए और अहद कीजिए कि डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। नगमों का ये सफ़र जारी है और इसी सिलसिले के तहत पेश है अगला नगमा।

0: दोस्तों, मैं ना भूलूँगा फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ये खूबसूरत गीत आपने सुना, गाया था लता मंगेशकर और मुकेश कुमार ने। दोस्तों, खूबसूरत फिल्मी नगमों का सफ़र जारी है। 101.9 FM पर आप भुलाए नहीं भूलते प्रोग्राम के तहत सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे, दिलकश फिल्मी नगमे। और नगमों के इस सफ़र में हम बात कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट की भी। दोस्तों, सेल्फ डेवलपमेंट में सबसे अहम क्या चीज़ होती है, उस पर भी हमने बात की कि डिसिप्लिन सबसे बहुत अहम चीज़ होती है। हम अक्सर कामयाब लोगों को देखकर कहते हैं कि ये बहुत लकी है, इसके पास टैलेंट है, लेकिन हम उसकी मेहनत, उसकी नाकामियाँ और उसकी मुसलसल जद्दोजहद को नहीं देखते। कामयाबी कोई अचानक होने वाला मुजज़ा नहीं है, ये रोज़ाना की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है, जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है।
2: अच्छा, आगे बढ़िए।

दोस्तों, गाता रहे मेरा दिल, ये खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म गाइड से। गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। दोस्तों, 101.9 FM पर आप खूबसूरत फिल्मी नगमे सुन रहे हैं। प्रोग्राम है भुलाए नहीं भूलते। इस प्रोग्राम में दिलकश नगमे सुना रहे हैं आपको, और आपको महसूस हो रहा होगा कि माजी के नगमों और गीतों के साथ हम कितने जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम इन नगमों के सफ़र में बात कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट की भी, कि कामयाबी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, इंसान ख़ुद को किस तरह बेहतर बना सकता है। सेल्फ डेवलपमेंट असल में है क्या चीज़, यानी हर वो शख्स जो आज कामयाब है। दोस्तों, आपको बता दें कि हर वो शख्स जो आज कामयाब है, वो कभी न कभी तो थका भी होगा, हारा भी होगा, और शायद अपने सफ़र को छोड़ने का इरादा भी किया होगा। लेकिन एक चीज़ जो उसे बाकी लोगों से अलग करती है, वो है इस्तकामत, यानी कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। किसी शायर ने कहा है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा।

दोस्तों 101.9 FM पर आप खूबसूरत फिल्मी नगमे सुन रहे हैं। प्रोग्राम है भुलाए नहीं भूलते, गीतों का सफ़र जारी है और इन गीतों के सफ़र में आप खूबसूरत फिल्मी नगमे सुन रहे हैं। तो पेश है अगला नगमा।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये खूबसूरत नगमा आपने फ़िल्म आनंद से सुना। आवाज़ थी मुकेश कुमार की। दोस्तों, 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते के तहत खूबसूरत फिल्मी नगमे। नगमों का यह सफ़र जारी है और आपके लिए हम पेश कर रहे हैं बेहतरीन फिल्मी नगमे। इस प्रोग्राम में नगमों के साथ साथ दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट की भी। हम अक्सर सोचते हैं कि कामयाबी के लिए बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कामयाबी छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। रोज़ 30 मिनट कुछ नया सीखना, रोज़ थोड़ा सा पढ़ना, रोज़ अपने मकसद पर काम करना, ये छोटे छोटे एक्शन वक्त के साथ बड़े रिजल्ट में बदल जाते हैं। एक दिन की मेहनत कुछ नहीं बदलती, लेकिन 100 दिन की मुसलसल मेहनत सब कुछ बदल देती है।

दोस्तों, ये खूबसूरत नगमा आपने फिल्म कुदरत से सुना। आवाज़ थी किशोर कुमार की। दोस्तों, 101.9 FM पर खूबसूरत फिल्मी नगमों का सफ़र जारी है। प्रोग्राम भुलाए नहीं भूलते के तहत आप सुन रहे हैं दिलकश फिल्मी गीत, और इस सफ़र में हम बात कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट की। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते और मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। हम मोटिवेशन के पीछे भागते हैं लेकिन डिसिप्लिन को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हमें बहुत दूर ले जाती है, इतना दूर कि हम वापस आने में हमें काफ़ी देर हो जाती है।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म प्यार का मंदिर से। इसे गाया था मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति ने। दोस्तों, 101.9 FM पर आप प्रोग्राम बुलाए नहीं भूलते की तरह सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। नगमों का ये सफ़र जारी है। लीजिए, आपके लिए पेश है एक और दिलकश नगमा।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा, मैं कहती हूँ

दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। प्रोग्राम है भुलाए नहीं भूलते। गीतों का ये सफ़र मुसलसल जारी है और गीतों के इस सफ़र में हमारी बात हो रही है सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में भी।

दोस्तों, सेल्फ डेवलपमेंट कोई एक दिन का जोश नहीं बल्कि ये एक मुसलसल सफ़र का नाम है। मोटिवेशन आपको शुरू करा सकती है लेकिन मंजिल सिर्फ डिसिप्लिन ही लेकर जाता है। तो आज फैसला करें, जोश के पीछे ना भागें बल्कि डिसिप्लिन को अपना दोस्त बनाएं, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो रुकने का नाम नहीं लेते।

दोस्तों, इस खूबसूरत नगमे में कहीं आप खो तो नहीं गए? महबूब की इतनी तारीफ की गई कि महबूब के तसव्वुर में कहीं आप भी तो नहीं खो गए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस सफ़र में बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। दोस्तों, 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्म नगमे। प्रोग्राम है भुलाए नहीं भूलते। इस सफ़र में ये नगमे आप सुन रहे हैं और इस महबूब की तारीफ़ वाले नगमे के बाद हम पेश कर रहे हैं आपके लिए एक ऐसा नगमा जो शरारती भी है और नटखट भी।

दोस्तों, इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब पेश है पयाम-ए-शब, तहरीर है मोहतरम ज़ैदी साहब की।

0: भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकशी का मज़ा हमसे पूछिए। हर इंसान जिंदगी में किसी न किसी तकलीफ से गुजरता है, लेकिन उस दर्द को खुद पर हावी करने के बजाय इसे संभालना और आगे बढ़ना ही कामयाबी है। माजी की यादें अगर तकलीफ दें तो उनमें खो जाने के बजाय हाल और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण जरूर होती है। मायूसी के बजाय उम्मीद और यकीन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने दुख और जज्बात किसी काबिल एतमाद शख्स से शेयर करना दिल को हल्का करता है और इंसान को नई ताकत देता है।
1: दोस्तों, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ नए रंग इख्तिताम पज़ीर होता है। अगली बज़ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।

0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ।
1: दोनों ही

0: विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमौल्य बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था उसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों जिनमें सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं उनमें दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग ने बताया कि बुधवार को फलता विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया में क्षेत्र में विस्फोटों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ आर बालसुब्रमण्यम और डॉ जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को काफी मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने उनके आगामी कार्यकाल के बहुत ही रचनात्मक और प्रभावशाली होने की कामना की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है। इसके साथ ही हमारी आखिरी सभा ख़त्म होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब बखैर, जय हिंद।